0: दाइ बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
1: तैले भन्छस् भने लौ जाम्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक
2: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू ओपिडी सेवा भिडियो एक्सरे सेवा ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा इसिजी सेवा मेडिकल सेवा इएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म डाक्टर हेमन्त स्वार टिकापुर ब्लक नम्बर 7 गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टिकापुर फोन नम्बर 091-560-095 मोबाइल नम्बर 98-484-27-359

0: मुका पिएर इठ कभी पेन्सिल कबू झल फटाका आज इठ का कना हो बाबा फिर ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिखने का हुई थी जलम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कैठ कबू पेन्सिल हेरा कैठ कबू झोल फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही ना कबू पेंसिल ले रही ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: ए भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन् त बाउ के पाउँछ त्यहाँ
4: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ
5: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि
6: त्यति मात्र होइन त्यहाँ त जस्मिन प्यान्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ
3: भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ
7: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एब्रिला ट्रेडर्स
8: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एब्रिला ट्रेडर्स
9: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर
7: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा सम्पर्क फोन नम्बर 98484-43673 र 98-14-68-02-04
10: विश्रामपछि खोज खबरमा पुनः स्वागत छ अब बाँकी खबर टिकापुरमा हुक्का खान बसेका घोडाघोडी नगरपालिका नौ फारमका 18 वर्षीय विमल साउनमाथि खुण्डा प्रहार भएको छ सोमबार साँझ करिब 6 बजे टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 बेलुवा

0: फरार भएको र उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डांगीले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएका कानूनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले कानूनी तथा प्राविधिक परामर्श शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नीति अनुसार स्थापना गरेको उक्त शाखामा व्यवसायलाई कानूनी परामर्शका लागि अधिवक्ता सिद्धराज ओझा तथा प्राविधिक विषयमा परामर्शका लागि इन्जिनियर होमबहादुर तामाङ कार्यरत रहेका छन्। खोज खबरमा अब पालो जनआवाजको सामुदायिक वन उपभोक्ताको सुख दुःखका सारथी बनेका छन्। आजको जनआवाजमा हामीले जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 शिव पार्वती महिला सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई वनबाट तपाईँले कस्ता सुविधा पाउनु भएको छ भनी सोधेका छौ।
1: म नवरान प्यारी देवी चौधरी हो, जानकी 5 कमौली, अब शिव पार्वती सामुदायिक वनको कहिले उपभोक्त काठी पाटा पैसा रहटो झिन्झमिन्झा गोटगाट घर चलैना पनि झेल ढोका बनाएकन रथिन टोका ठोडे ठाई है झेल ढोका बनाएकन घर वर गोटगाट रहटो झिन्झा काठी पैठी आओ काट के ले जाते अपने बनो नक्शान है ना नहीं कट मने मन के काटल उटल रहते है झिन्झा मिंझा दौरा कह दे है मने झाला पाता नहीं।
2: नमस्कार, मोरिक नाव शर्मिला चौधरी, जीविक उपार्जन के लग बक्सा डेल आते कहीं पर बुंगुर के भी पाले पाले बाबा तो बुंगुर के भी पालो नायल और अस्ते मरने कर निकलक हुईल थोड़े बाबा कठो का मरने कर निकलक दौरा फिर मिल जाए कबू जबू अब छोट मोट बनो हुई ले कारण से सकून तो एक सीट पटाक लगा के काठी देना से गारो पड़त कबू जबू अपर घर में पड़ता डावर नहीं रह तो घर में डावर रखे मिलत के पड़ल।
3: नमस्कार, सखन मोर नाम मीना देवी चौधरी हो, हमरे काठी डेट है घर बनाए नकल हुई तो झाल ढोका कला करी फिर डेट है कहे हैं और फिर सहबी तो घास से डेट है और झाला से दिन लग से डेट है हमारे यात्रा सेवा सुविधा पैके आती हम अलग बनवा तो कल से बढ़िया हो बनवा हम अलग बनवा नहीं तो हमारे यात्रा सेवा सुविधा ना पैकी।
0: यसै जनावसँगै खोज खबर सकियो। अन्त्यमा जाँदा जाँदै खबरका मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक। शुक्रबारदेखि देशका विभिन्न स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन नागरिकलाई मौसमविदको आग्रह। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था मूल समितिको 28 वार्षिक साधारण सभा तथा 6 अधिवेशन शुरू, सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने। जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्टको विदाई, नारायणपुरमा सञ्चालित गणेश उत्सव सम्पन्न। र सुदूरपश्चिमका निर्माण व्यवसायीलाई अब कानूनी तथा प्राविधिक परामर्श दिइने। हवस् त, अहिलेलाई खोज खबर यति नै। प्राविधिक मित्र छपिलाल चौधरीलाई धन्यवाद दिँदै अहिलेको खोज खबरबाट म ईश्वर साउद विदा हुन्छु। सामुदायिक रेडियो टीका प्रएफएम सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।

0: मिस एल्विरा टेरसमा डिजाइन डिजाइनका साडी, सुट, कुर्ती, पलाजा तथानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
1: एल्विस एल्विरा टेरस, सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली, संचालक सुजिता श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9811 67 38।

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटाका आज था, कहा कना का हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बर थी रहा
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में, रट गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिकला झोला है मर्म फेकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर, अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलतमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असोज 10 गते, 17 गते, 24 गते र 31 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
4: हेलो बहिनी कता हो, तिमीलाई थाहा छ कि नै सीजी कम्पनीको वाईवाई जिंक 15 रुपियाँमा एक पेटी ₹560 उपहार सहित एक कसौरा पनि पाइन्छ, तिमीले कतिमा किन्यौ?
5: मैले त एक पेटी चाउचाउ ₹600 किने।
4: 600 रुपियाँ किन हाल्नु पर्यो, 560 त ब्लक नम्बर 14 रहेको हरिलाल किराना पसलमा ₹15 चाउचाउ पाइन्छ, त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ, र त्यस्तै ₹25 क्लासिक चाउचाउ र ₹35 चाउचाउ ₹2500 आउँदैछ नि, त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ। फेरि 500-600 रुपियाँ वाईवाईमै किन हाल्ने, 460 मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ, त्यो पनि वाईवाई सीजी कम्पनीको, र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ। भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुहोस् है, होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ। आधिकारिक विक्रेता
5: हरिलाल किराना पसल, ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टीकापुर कैलाली, सञ्चालक प्रदीप बहादुर विष्ट, सम्पर्क नम्बर 98 48 40 22 41।

0: छी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 3 0 0
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महिन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनऊ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 3 0 0 और 98 6 56 92 0 26

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके बिहानिक 9 बजे थारू भाषा खोज खबरमा आफ्नो अकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपना ओकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुन्ती रहलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। शुक्रवार थेसी देश के विभिन्न ठाउँमा भारी थेसी अति भारी वर्षा के संभावना, सतर्कता अपनाए नागरिक, मौसम विज्ञ आग्रह। रानी जमरा कुलहया सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था मूल समिति के 28 वार्षिक साधारण सभा तथा 6 अधिवेशन शुरू, सभा लौ नेतृत्व चयन करना। जानकी गांवपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्ट के विदाई, नारायणपुर में संचालित गणेश उत्सव सम्पन्न। राष्ट्र संघ महासभा में भाग लिए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह आज न्यूयॉर्क जैटे। ऐना शुक्रवार थेसे सोमवारसम्म देशके विभिन्न ठाउँमा भारी थेसे अति भारी वर्षाके सम्भावना रहलक नेपाल मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनैलबा। महाशाखा काल जारी कलक विशेष मौसम बुलेटिन अनुसार शुक्रवार थेसे असोज 11 गते सोमवारसम्म गण्डकी ओ लुम्बिनी प्रदेशके कुछ ठाउँमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हावाहुरी भारी वर्षा तथा एक दुई ठाउँमा अति भारी वर्षा के सम्भावना रहलक जनागिल्बा। वस्तकन मध्य प्रदेश तथा कोशी बागमती व सुदूरपश्चिम प्रदेश के कुछ ठाउँमा मेघगर्जन चट्याङ तथा हावाहुरी सहित भारी थेसे अति भारी वर्षा व कर्णाली प्रदेश के कुछ ठाउँमा भारी वर्षा के सम्भावना रहलक महाशाखा जनैलबा। देश के अधिकांश ठाउँमा मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा हुना सम्भावना रहलक। ओर्से यात्रा के क्रममा आवश्यक सतर्कता अपनाई महाशाखा सकुहन मन अनुरोध करलबा। महाशाखा के अनुसार हाल बंगाल के खाड़ी के मध्य भूभाग आसपास रहलक न्यूनचापीय क्षेत्र थप प्रभाव थप शक्तिशाली बंती बलगर न्यूनचापीय क्षेत्र में परिणत होकन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशातर्फ सर्नादे गिल्बा। याकर प्रभाव बुधवार थेसे कोशी मधेश बागमती ओ गण्डकी प्रदेशमा वर्षाके गतिविधि बढ़ती जैना पूर्वानुमानकै गिल्बा। महाशाखा भारे तथा छुटी लद्या ओ खोलवा मन पानी के सतह बढ़सेकना, दैनिक जनजीवन कृषि स्वास्थ्य पर्यटन लगायत के क्षेत्र में असर पर सेकना हुईला कोहर्से आवश्यक सतर्कता अपनाई अनुरोध कई गिल्बा। विशेष के का हिमाली भूभाग में भारी हिमपात हुईसेकना हुईला कोहर्से हिमाली पदयात्रा तथा पर्वतारोहण में जयुया संबंधित क्षेत्र के मौसम बारे जानकारी लेकर उच्च सतर्कता अपनाई महाशाखा अनुरोध कलक मौसमविद निशा निग्रौला जानकारी देलबाट। रानी जमरा कुलहरिया सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था मूल समिति के 28 वार्षिक साधारण सभा तथा 6 अधिवेशन टीकापुरमा हुइल्बा। मूल कुला समिति के अध्यक्ष कुमार राज शाही की अध्यक्षता में हुइल कार्यक्रम मन पूर्व सांसद लालवीर चौधरी प्रमुख अतिथि रह। कार्यक्रम उद्घाटन करती पूर्व सांसद चौधरी सिंचाई आयोजना बनाई दिन रात खटलक मनीन हन बिर्स नई हुईना बटुलाबाट

0: वहाँ आयोजना संचालन गर्न आगस सम्झौता करबेर कम्तीमन 4 हेक्टर जमीनसम्म पानी वितरण प्रणाली बनैना सम्झौता कर्ल खुइल सेफे ऊ वन निषेकलक बटुइलबाट वहाँ अपना लम्मा समय कुला समिति मन बितैलक उहर्से ऐना दिनमफे किसान सिंचाई विस्तार आयोजना संचालन लगायत के बात मन सहयोगी के भूमिका रहना बटुइलबाट आयोजना निर्देशक प्रेमराज किमिरे कोविड महामारी व 2072 के भूकंप से आयोजना के कुछ काम मन ढिलाई हुईलक बटुलबाट वहां निरंतर कुला समिति किसान के सरसल्लाह अनुसार विकास निर्माण व सिंचाई सुविधा विस्तार जसिन काम संचालन करती जिना बटुलबाट वहां अन्य जिला के सिंचाई उपभोक्ता हुक्र यहां के उपभोक्ता समिति के काम के अनुगमन कर्क सिक्क न जैना हुईलक उसे यहां मजा काम हुईलक बटुलबाट सिंचाई आयोजना कृषि उहर के प्रमुख भरत कडेल आब आयोजना के क्षेत्र विस्तार हुईलक बटुटी यह वर्ष किसान छनौटके कृषि कार्यक्रम के समझौता हुईटी रलक बटुलबाट वहां खाद्यान्न बाली के बीउ उत्पादन चैते धान आलू खेती तरकारी तथा विभिन्न उत्पादन लगायत के कार्य आघ भर्ती रलक बटुटी कोल्ड स्टोर निर्माण काम फे 95% ओरैलक उहर्से इह मंगसिरसे संचालनमा ऐना तयारी करतिरलक बटुइलबाट राष्ट्रिय सिंचाई जल उपभोक्ता महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष गुन्देव पन्त किसान सहज पानी पैना व्यवस्था कर कुछ सुधार आवश्यक रहलक बटुइटी हाइड्रो पावर व सिंचाई सुविधा अलग अलग कराईपना बटुइलबाट रानीकुला के अध्यक्ष वीरबहादुर घरदी किसान सूचना पाई कठिन हुईलक बटुइटी कसिकना आग बहना व समय में किसान सम्म सूचना कसी पुगैना कना बारे मन एकचो छलफल कर आवश्यक रहलक बटुइलबाट कुल्हरिया कुला अन्तर्गत के कुला के अध्यक्ष पुष्पराज जोशी किसान खोजलक बेला खेतसम्म पानी पुगाई निसेकलक बटुइटी कुला बन्तीरलक ठाउँमा अनुगमन करपना बटुइलबाट रानीकुला अन्तर्गत शाहीपुर कुला के अध्यक्ष धर्मराज जोशी आयोजना के काम धुर अधुरा रहलक उहर्से सिंचाई सुविधा किसान पाई निसेकलक समयमा सूचना निपाइबेर किसान दुःख झेल्टी रहलक उहर्से यहाँ व्यवस्थापन करपना व 12 महिना पानी के सुविधा हुईपना बटुइलबाट कार्यक्रम कोषा अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर साउट 93,35,410 रूपियाँ बराबर के आयव्यय प्रस्तुत करलबाट उपाध्यक्ष कीर्ति बहादुर रोकाया स्वागत करल हुईल कार्यक्रम संचालन सचिव परशुराम महतो करल रह साधारण सभा मूल कुला समिति के लौ नेतृत्व चयन करियाबा खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पाछा निनीबाटी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: लो इति छिटो आमा बन्न लागो त अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ
2: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
3: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
4: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
3: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा जानकी गाउँपालिकाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्टकै विदाई तथा फेरी भेटौला कार्यक्रम हुइलबा जानकी गाउँपालिकाकै 1 वर्षकै बसाई पाछा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्ट सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा सुरुवा होक गइलबाट फेरी भेटौला तथा विदाई कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गाउँपालिकाकै अध्यक्ष गणेश चौधरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट पालिकामा मजा काम कलक बटुटी उहाँ एक सफल मनै हुइलक बटुइलबाट अध्यक्ष चौधरी काम करबेर जब्बफे जनताहन केन्द्रमा धर्क काम कर आवश्यक रहलक बटुलबाट उपाध्यक्ष लालमती कठरिया पालिकामा कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि एक औरके परिपूरक हुइलक बटुइटी ऐना दिनमा फेसक कुहनके सहयोग रहना बटुलबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्ट पालिका से आपन हन मजा सिखाई हुइलक अपना सिखलक बात सिखाई पैलक ओ काम करना सिलसिलामा जनप्रतिनिधि व कर्मचारी के सहयोग पैलक बटुलबाट टीकापुर नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ममता बास्तोला स्थानीय तहमा काम करना अवसर और चुनौती डुनु रहलक बटुलटी प्रचलित एन नियम अनुसार काम कर पर्ना हुइलक वर्षे पालिका आग बढ़ेनामा जनप्रतिनिधि के भारी भूमिका हुइना बटुलबाट वडा नम्बर नौ के वडा अध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट पालिका मन मिलनसार लगनशील होक नीति व विधिमा रहकर काम करलक बटुलबाट कार्यक्रम कार्यपालिका सदस्य पवित्रा विश्वकर्मा योजना तथा अनुगमन शाखा के प्रमुख हीरालाल चौधरी ओडाकी सचिव हुकन के उहर से वडा नम्बर एक के वडा सचिव ईश्वर जैसी प्रधान अध्यापक के उहर से कालिका आधारभूत विद्यालय के प्रधान अध्यापक मथुरा प्रसाद न्यूपानी लगायत बोल रहा कार्यक्रम संचालन प्रशासन शाखा प्रमुख मीनराज कठरिया चलैल रहा संयुक्त राष्ट्र संघके 21औं महासभामा सहभागी हुई उच्च स्तरीय नेपाली मन्त्रीमण्डल के नेतृत्वकर्ती प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आज संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयोर्क शहर प्रस्थान हुइटीबाट वहाँके मन्त्रीमण्डलमा प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन्जनकार प्रमुख स्वकीय सचिव सुहास शर्मा निजी सचिव प्रदीप परियार फोटोग्राफर विनय साक्य लगायत रहलबाट प्रधानमन्त्री शाह त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल से कतार एयरवेज के आज अपराह चार बजकर पन्ध्र बजे के उडान उहर प्रस्थान करबियाबाट प्रधानमन्त्री शाह महासभा के उच्च स्तरीय सत्र हन इह असोज 8 गते सेप्टेम्बर 24 में सम्बोधन करबियाबाट प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्व गर्ना नेपाली मन्त्रीमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल सहितके सहभागिता रहियाबा न्यूयोर्कमा रहबेर प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्र संघके महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस से भेटवार्ता करना हुइना कार्यक्रम तय हुइलबा प्रधानमन्त्री शाह इहे असोज 10 गते स्वदेश फर्कना कार्यक्रम रहलबा प्रधानमन्त्री शाहके यी पहिल विदेश भ्रमण हो। कैलालीकै टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 नारायणपुरमा संचालित गणेश उत्सव समापन कैगिल्बा भदौ 30 गते से शुरू हुइलक गणेश उत्सव असोज 5 गते काल समापन करगिलक आयोजक जनैलबा गणेश उत्सव समिति नारायणपुर के आयोजना 6 नम्बर ओडा कार्यालय नारायणपुर बहुद्देश्य सहकारी संस्था के प्रायोजन तथा धर्मराज शाही के विशेष सहयोग मन गणेश उत्सव संचालन कैगिल रह गणेश उत्सव समिति के संयोजक उपेन्द्र खटका यह वर्ष देशमा भारी घटना हुइलक कारण सामान्य करना योजना रहलक हुइल सेफे सक्कुन के सहयोग लेके विगत के वर्ष सेफे इहे वर्ष कार्यक्रम आमिन मजा हुइलकमा खुशी व्यक्त कलबाट 7 दिनसम्म संचालन हुइन गणेश उत्सव मन बिहान भजन कीर्तन योग तथा संध्याकन भजन मण्डली व भजन सम्बन्धी नृत्य कर्क कार्यक्रम कैगिल रह गणेश उत्सव समिति के कोषाध्यक्ष युवराज नायक गणेश उत्सव सफल पारस सहयोग कर्वियन हन धन्यवाद देती ऐना दिन मफे सहयोग के अपेक्षा करलक बटुलबाट टीकापुरमा हुक्का खाई बैठलक घोड़ाघोड़ी नगरपालिका 9 फारम के 18 वर्षीय विमल साउत के ऊपर खुड़ा प्रहार हुइलबा सोमवार संध्या का करीब 6 बजे टीकापुर नगरपालिका 7 बेलुआ स्थित ट्री हाउस होटल मना हुक्का खाई बैठलक साउत के ऊपर तीनठो मोटरसाइकिल में अलग 8-9 जना के समूह 81 खुड़ा प्रहार कलक प्रहरी से जनागिलबा खुड़ा प्रहार से साउत के दाहिने हाट व ग्वारा मना चोट लागलबा घाइते साउत के टीकापुर अस्पताल में उपचार पाछा गैल रात का नई ठप उपचार के लागि नेपालगंज रिफर करगिलक प्रहरी से जनागिलबा प्रहरी के अनुसार घाइते साउत के अवस्था मध्यम रहलबा आक्रमण पाछा संलग्न समूह फरहार हुइलक व हुकन के खोजी कार्य जारी रहलक इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर के प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डांगी जानकारी देलबाट खोज खबर फेरफे विश्राम पाछा निनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
3: के तपाई चाया डन्डीफोर दाद एलर्जी कपाल झर्ने समस्याबाट पीड़ित हुनुहुन्छ?
5: अब टीकापुरमा रहेको मनीष मेडिकल हलमा काठमाडौँका वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेन्द्र लिम्बू
3: यही असोज 10 गते शनिबारका दिन
5: मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
3: मनीष मेडिकल हलमा पाइने सेवाहरू: अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या, छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने, इक्जेमा, सोरियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार गरिने, साथै प्रत्येक दिन एमबीबीएस फिजिसियन डाक्टरद्वारा पेट, छाती, मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ। डाक्टर आउने दिन यही असोज 10 गते शनिबार।
5: स्थान: मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर 1, कैलाली। सम्पर्क फोन नम्बर 98600071024 र 98046777417।
6: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको धारा जनानका लागि आवेदन दिने बारेको सूचना। टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था र टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित रामपुर खानेपानी 1 आपसमा मर्ज भई खानेपानी सेवा विस्तारका लागि सम्झौता भइसकेको हुँदा वाडा नम्बर 3 का उपभोक्ता ज्यूहरूलाई विशेष सहुलियतमा धारा जडान गर्ने योजना रहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। उक्त सहुलियत कार्यक्रममा सहभागी हुन यही मिति 2083 असोज 1 गतेदेखि पुष 1 गतेसम्म संस्थाको कार्यालयमा धारा जडानका लागि आवेदन दिन हुन अनुरोध छ। याद राख्नुहोला, पुष 1 गतेपछि सहुलियत कार्यक्रम लागू हुने छैन। थप जानकारीका लागि संस्थाको कार्यालयको सम्पर्क नम्बर 091-561-449 सम्पर्क गर्नुहोला। टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था।
0: खोज खबरमा फेरि स्वागत। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै निर्माण व्यवसाय भोक्तिएलक कानूनी प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न उद्देश्य लिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माण व्यवसाय महासंघ कानून तथा प्राविधिक परामर्श शाखा सञ्चालनमा लनलबा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघकै नीति अनुसार स्थापना कर्गिलक ऊ शाखामा न व्यवसाय न कानूनी परामर्शकै लागि अधिवक्ता सिद्धराज ओझा तथा प्राविधिक विषयमा न परामर्शकै लागि इन्जिनियर होमबहादुर तामाङ कार्यरत रहुयाबाट। शाखाकै उद्घाटन नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघकै उपाध्यक्ष प्रकाश बहादुर सेठी कर्लखुइट। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल भूटानकै प्रधानमन्त्री छिरिङ टोब्गेसे शिष्टाचार भेटवार्ता कर्लबाट। संयुक्त राष्ट्र संघकै 21 महासभाकै अवसरमा न्यूयोर्कमा हुइलक भेटमा उहाँ उक्रबीच नेपाल ओ भूटान बीचकै सुमधुर द्विपक्षीय सम्बन्धकै विविध पक्षमा छलफल हुइलक मन्त्री खनालकै सचिवालय सिजना गिल्बा। भेटमा दुनु नेता दुई देश बीचकै सम्बन्ध थप सुदृढ बनेना विषयमा विचार आदान प्रदान कर्लरल। संघ जलवायु परिवर्तनकै कारण बढ़दो आवृत्ति ओ तीव्रताकै प्राकृतिक विपदकै विषयमा समेत छलफल हुइल रह। नेपाल ओ भूटान दुई परिवर्तीय मुलुक हुइलक वर्षे जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषयमा सहकार्य हन थप मजबूत बनाई पनामा दुनु पक्ष जोर देल रह। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाकै बैठक आज बैठिबा अपरान्ह 1 बजे बैठना। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम अग्ले नागरिक लगानी कोष तेस्रो संशोधन विधेयक 2083 उपर विचार गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरियाबाट। आज यी विभिन्न चार्थो संसदीय समितिकै बैठक बैठिबा। संघीय सांसद सचिवालयकै अनुसार अर्थ समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति ओ सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति के बैठक बैठीबा बिहान 10 बजे बैठना अर्थ समिति के बैठक में अर्थ सम्बन्धी कुश नेपाल कानून संशोधन और खारिज कर बनलग विधेयक उपर सैद्धांतिक छलफल करना कार्यसूची बा ऊ विधेयक उपर संशोधन प्रस्ताव दर्ता करायल हुईलक संशोधनकर्ता सांसद ठुकन से छलफल हुआ बा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि बैठक के समिति के बैठक बिहान 10 बजे नै बैठिया बा सो समिति के बैठक में राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना और संचालन विधेयक 2081 मस्यौदा प्रतिवेदन उपर छलफल हुआ बा विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति के बैठक बिहान 11:15 बैठीबा ऊ समिति के बैठक में नेपाल मन स्वदेशी व वैदेशिक एवं निजी व सार्वजनिक लगानी के अवस्था जलवायु परिवर्तन के असर व लगानी के वातावरण में पर्लक प्रभाव राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर में कर्ना लगानी सम्मेलन के व्यवस्थापन संयुक्त लगानी वातावरण बनाई आवश्यक नीति एवं कानून में करपना सुधार लगायत के विषय में छलफल कर जैनाबा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति के बैठक बिहान 11:30 में बैठीबा बैठक में पुस्तकालय नीति के मस्यौदा के छलफल में विज्ञ से छलफल कर जैतीबा यह समाचार के संग खोज खबर ओराइल अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से शुक्रवार थेसे देश के विभिन्न ठाउँ में भारी थेसे अति भारी वर्षा के संभावना सतर्कता अपनाई नागरिक मौसमविद के आग्रह रानी जम्बा कुलहरिया सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था मूल समिति के 28 वार्षिक साधारण सभा तथा 6 अधिवेशन शुरू सभा लौ नेतृत्व चयन करना जानकी गांवपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्ट के विदाई नारायणपुर में संचालित गणेश उत्सव ओ राष्ट्र संघ महासभा में भाग लिए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह आज न्यूयॉर्क जैती लित आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्रह और समाचार 12 बजे नेपाली भाषा में खबर संक्षेप सुन सकबी अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र छपीलाल चौधरी धन्यवाद देती मई गीता फे विदाई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुन्दी रवि राम राम।

0: अरेला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपट मूल्यमा बनाइन्छन्। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: अरेला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमरा सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।

0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
2: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे भोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना हुने न पट्टा नि पैना त
3: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान से के कतरा सुघर बना कन ल बाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के होस्ट पार्टी गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बर थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोप्राइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चौक लग अपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चौक लग टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: ए सन्तेकी आमा पर कान्छाशालाको बिहाको न्युज आएको छ कसो हो त जाने विचार छ कि नै त
2: आफ्ना कान्छा भाइको बे नगरिकन पनि भएन जाउँ भने भयाको मंगल सूत्र पन भाँची गयो
1: यतिका लागि त सामुएल जोलस बनेको है बरु अहिलेै जाउँ एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइएला छन् त्यहाँ
2: आज त सन्त्याका बाले मनकै बुढो हर्यो हट त बाई जाउँ।
3: सामुएल ज्वेलर्स सुनसादीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनसादी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार सम्पर्क नम्बर 98-68-44-1208 98-486-39-261।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए।
1: अरेला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
2: अरेला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमरा सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।
3: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: हेरा में दिन रात गरी मरी मरी पैसा कमायो तर की गर्नु यो भर्ना भएको जिंदगी कति बेला के आपत आई पर्छ थाहै हुँदैन सोच्दे न सोचेको घटना हुन्छ कि बिरामी परिन्छ अनि सबै पैसा स्वाहा
5: हो नि बिरे मलाई नि त्यस्तै पर्यो नि हेर्न अस्ति अचानक बुढीलाई एपेन्डिसाइटिस भएर रातारात अस्पताल लगेर इमर्जेन्सीमा उपचार गर्नु पर्यो यसो केही इलम गरौंला भनेर राखेको पैसा सबै सकियो नि हेर्न
6: यो रामे र बिरेको कुरो सुन्दा नि मलाई त अचम्मै लाग्छ क्या यस्तै आपतको समयमा अस्पतालमा इमर्जेन्सी हुने खर्चहरू बिहोरी दिने सन लाइफको सन मेडिकेयर बिमा सुविधा लिएका थिएनौ र तिमीहरूले
5: के गर्छ र सन मेडिकेयरले
6: सन मेडिकेयरले सड़क दुर्घटना एपेन्डिसाइटिस पेनक्रियाटाइटिस हृदय घात मस्तिष्क घात विद्युतीय वा अन्य जलन डुबान विषक्तता जस्ता 15 दुर्घटना र रोगहरूका लागि आपतकालीन अस्पताल खर्चमा क्षतिपूर्ति दिन्छ त्यो पनि एकदमै थोरै लगानीमा
5: यति गरेपछि धेरै राहत हुने रहेछ त
6: हो कान्छा अपर्जट आउने आपतमा राहत भनेकै सन मेडिकेयर कुरा बुझ्यो होइन त तिमीहरूले
5: चिया पनि खाइयो कुरो पनि बुझ्यो है केटा हो
7: कागजात हराएको सूचना टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का कमला सुडारी को पासपोर्ट कक्षा 8-10-12 का मार्कशीट लगायत का कागजातहरू शुक्रवार दिवसो 12 बजे तिर टीकापुर खड़गचोक देखि जमरा पारी पेट्रोल पंप सम्म जाने क्रम में बाटो में हराएकाले पाउनुहुने महानुभावहरूले यहाँ दिएको फोन नम्बर वा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम में बुझाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ पाउनुहुने महानुभावहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ सम्पर्क नम्बरहरू 9764-26-70-90 र 9815-60-66-05

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी।
1: लिया लिया मैं अभी ही जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या को उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुर।
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने।
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
4: ईसीजी सेवा,
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
3: फोन नम्बर 98484-27359 र 98-48-42-73-59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वहाँ नन्दे भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनी ना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41268 और 98486 39261।

0: कबू का पिए रही था, कभी पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज का कना हो बाबा के ओस्ट बाटी गतिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरास बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 ओ 98 6 56 92 026
2: सुन्नुहोस् न इस पाली नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु सिर्जना सुनचाली पसलमा जाऊ न त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे
3: ए हो र गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त
2: हुन्छ नि आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि
3: त्यसो भए आजै जाउँला नि
2: ल अरूलाई पनि भनौँ है
3: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
4: सिर्जना सुन चाँदी पसल तपाईँको रोजाए हाम्रो जिम्मेवारी
3: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा सञ्चालक रूपलाल सुनार सम्पर्क नम्बर 98 095 43 893
2: एल्विस एल्विरा टेरसमा डिजाइन डिजाइनका साडी सुट कुर्ती पलाजा र थानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन् एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला
4: एल्विस एल्विरा टेरस सिद्धार्थ चोक गालप सुपर मार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली सञ्चालक सुजिता श्रेष्ठ सम्पर्क नम्बर 98 11 67 38 87

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके संजेक 5 बजे थारू भाषा खोज खबरमा अपनौकन स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम अपनहोकरा बस सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो वो नेपाली पात्रो में फिर सुन्ती रहल बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से ऐना शुक्रवार थे से सोमवार समय नेपाल में भारी थे से अति भारी वर्षा के संभावना स्थानीय तह पूर्व सूचना में जोर देकन सतर्कता अपनाइती मुक्त कमैया के समस्या समाधान कर बजेट में आवश्यक व्यवस्था कर अपना सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री खगराज भट्ट के कहाई ओ सुदूरपश्चिम मन सहज नहीं हो मिर्गौला बेरमेन न डायलिसिस सेवा लेना आप खोज खबर विस्तार में ऐना शुक्रवार थे से आईतवारसम देश के विभिन्न स्थान में भारी थे से अति भारी वर्षा के संभावना रहलक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनाइदेबा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा मौसम संबंधी सूचना जारी करल पाछ यहां के स्थानीय तहफे सतर्कता अपनाई जुटलबाट नेपाल मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ऐना शुक्रवार थे से आईतवारसम देश के विभिन्न ठावना भारी थे से अति भारी वर्षा के संभावना रहलक ओरसे सतर्कता अपनाई आग्रह कलबा हाल बंगाल के खाड़ी के मध्य भूभाग आसपास रहलक न्यूनचापीय क्षेत्र थप शक्तिशाली बनती गईलक ओरसे वाकर प्रभाव नेपाल में फिर पर्ना देख गिलक ओरसे विभाग डेग जिना विभाग जनैलबा यी प्रणाली के मुख्य असर विशेष कैक असोज 9, 10 और 11 गते रहना ओ बागमती प्रदेश मन पश्चिम क्षेत्र मन बढ़ी प्रभाव पर्ना देखैलक महाशाखा जनैलबा गण्डकी ओ लुम्बिनी प्रदेश के अधिकांश भूभाग मन भारी थेसे ध्यूर भारी ओ एक दुई ठाउँमा अति भारी वर्षा हुने सम्भावना रहलक ओरसे उच्च सतर्कता अपनाइपना मौसमविद के कहाइबा लुम्बिनी के डाङसे पूर्वी भूभाग नवलपुरसम्म कर्णाली के पूर्वी भूभाग ओ सुदूरपश्चिम के दक्षिणी पहाड़ी तथा तराई भूभागमा फेर प्रभाव पर्न देखगिल्बा यी वर्षासे देश के सक्कु जसिन ठाउँमा प्रभाव पर्न देखगिलक ओरसे सक्कु नागरिक सचेत हुइपर्ना तर भारी वर्षा तथा अति भारी वर्षा हुने सम्भावना देखगिलक ओरसे डेग्गिलक क्षेत्र के नागरिक हन बढ़ी सचेत हुईपना मौसमविद विभूति पोखरेल बटुलाबाट मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ऐना शुक्रवार थेसे आइतबारसम्म देश के विभिन्न स्थान मन भारी थेसे अति भारी वर्षा हुना कहलपा छ यहाँ के स्थानीय तह हुक्र फे उज सूचना हन गाउँ टोल स्तरसम्म पठाइ लागलबाट वर्षा पाछ ऐना बाढ़ी पहिरो तथा भूछैसे हुना क्षति कम हुएकना उद्देश्य लिएका विभिन्न माध्यम से आफ्ना हुक्र टोल टोल तथा व्यक्ति हुक्र समक्ष सूचना पुगैना कामकर्ती र लग जानकी गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन शाखा के प्रमुख नेत्र प्रसाद जैसी बटुलाबाट वर्षक टीकापुर नगरपालिका फे जोखिम क्षेत्र के पहचान कई का सक्कुन से समन्वय व सहकार्यकर्ती विपद से हुना क्षति घटैना काम मन लग बटवागिल्बा टीकापुर नगरपालिका वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा के निर्मला चौधरी समन्वयकर्ती रलग बटुलाबाट मौसम पूर्वानुमान महाशाखा अनुमान करल अनुसार यदि वर्षा हुईकलसे भारी धनझन के क्षति हुई से कि वहमारा से ई क्षति घटाईक लगी हमारा सक्कुज सचेत हुईपना जरूरी देख जाएट सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री खगराज भट्ट मुक्त कमैया के आवास तथा जीविकोपार्जन से जोरगिरक समस्या समाधान के लागि प्रदेश सरकार गंभीर रहलक बटुलाबाट अपन आवास सहित गाँस बास के समस्या समाधान कर दिए माग करती मुख्यमंत्री निवास पुगलक मुक्त कमैया के प्रतिनिधि मंडल संघ के भेट मन मुख्यमंत्री भट्ट मुक्त कमैया के समस्या समाधान के लाग प्रदेश सरकार आवश्यक पहल करना बटुलाबाट

0: पश्चिम प्रदेश छ पहाड़ी जिल्लामा मिर्गौला के बेरहमेन आमिन फेर डायलासिस सेवा पाई स्याकल्नी हुई यहाँ के सात पहाड़ी जिल्ला मध्य डरेलधुरा अस्पताल में 500 के मिर्गौला डायलासिस सेवा संचालन में बाकलसे छ जिल्ला में मिर्गौला पीड़ित बेरहमेन उपचार के लागि अन्यन्त्र जाइपना बाध्यता बा 500 रहलक डडेलधुरा मन 30 जना डायलासिस सेवा लेटिरलक अस्पताल जनैलबा यहाँ के पहाड़ी जिला के मिर्गौला पीड़ित बेरहमेन उपचार के लागि कैलाली के धनगरी और कंचनपुर के महेन्द्रनगर के संग भारत के विभिन्न अस्पताल में समेत धाईपना बाध्यता रहलबा तराई के दुई जिला व डडेलधुरा में डायलासिस सेवा रहल सेफे चाप अत्यधिक हुईबेर बेरहमेन सहज रूप में सेवा नई पैना स्थिति रहलबा कैलाली के सेती प्रादेशिक कंचनपुर के महेन्द्रनगर स्थित महाकाली प्रादेशिक व टीकापुर प्रादेशिक अस्पताल मिर्गौला के बिरमेन डायलासिस सेवा प्रदान करती रलखुल से फे हुकहन के उपचार के लागि महीनौ कुरोपना अवस्था बा यहाँ के सरकारी व निजी अस्पताल कुल 4600 के मिर्गौला डायलासिस सेवा प्रदान करती रहलबा सेती प्रादेशिक अस्पताल में 2100 महाकाली व टीकापुर अस्पताल में 10-10 व धनगरी स्थित निजी अस्पताल में 10 संचालित बा संघीय सरकार माटहट रहलक ददेलधुरा अस्पताल में 5600 रहलबा डोटी जिला अस्पताल से डायलासिस सेवा प्रदान के गृह कार्य हुईटी रुल सेफे सेवा संचालन में आईस्याकल्नी हो डोटी जिला अस्पताल के सूचना अधिकारी नारद प्रसाद भट्ट भौतिक संरचना अभाव के कारण डायलासिस सेवा प्रदान कर कठिनाई हुईटी रलक बटुला वहां स्वास्थ्य सेवा विभाग से तीन थान डायलासिस मेसिन अस्पताल हन डेगिलक जानकारी करेला खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछैनिनी बाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 9894827359 र 9848423059 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै
5: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछेउ भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होस् या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ
6: जानकी गाउँपालिका 1 नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
7: सुन्नुहोस् न यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
8: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
7: हुन्छ नि।

0: आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
1: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
0: ल अरूलाई पनि भनौँ है।
1: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
0: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाए हाम्रो जिम्मेवारी।
1: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 9805943893।
2: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। मलेसियामा नेपाली श्रमिक भर्नाकै लागि सीमित म्यान पावर कम्पनी कलक अधिकार देना कैकन आघ बराहगिलक प्रक्रियाके विवाद प्रधानमन्त्री तहमन पुगल बा। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मंगलबार बिहान मलेसियाके समकक्षी अनबर इब्राहिम से टेलिफोन वार्ता कति मलेसियाके रोजगारीमा देगिलक सिन्डिकेट ओ बिचौलिया प्रणाली अन्त्यकर आग्रह कर्लबाट वहाँ नेपालके उहर्से असिन अवस्था स्वीकार्य निहुना स्पष्टप्रति समस्या समाधानके लाग दुनू देशके श्रम मन्त्री बीच प्रत्यक्ष वार्ता कराई मलेसियाली प्रधानमन्त्री हन आग्रह कर्लबाट। प्रधानमन्त्री शाह मलेसियाली समकक्षी संघके बातचित मन नेपाल मलेसिया श्रम सम्बन्ध हन मर्यादित पारदर्शी ओ शोषणमुक्त बनाई पर्नामा जोड़ देलबाट। हमन हन सिन्डिकेट ओ बिचौलिया तन्त्र मन्नी परत यी कौनोफे हालतमा स्वीकार्य निहो यी से श्रमिकुकन हमारमा पारल बा। प्रधानमन्त्री शाह कल ओमार अपनाहुकनके श्रम मन्त्री हन हाम्रो श्रम मन्त्री से प्रत्यक्ष भेटवार्ता मन बैठक वही समस्या समाधान के लाग हटाई आवश्यक कदम चाला आग्रह कलबाटी। जवाफमा मलेसिया के प्रधानमन्त्री इब्राहिम फे अपना सिन्डिकेट ओ बिचौलिया प्रथाके विपक्षमा रहलक बटुलाबाट उहाँ आपन श्रम मन्त्री नेपाली समकक्षी से समन्वय कर्क विषयमा ठोस निकास निकाएर निर्देशन देना प्रतिबद्धता जनैलबाट। प्रधानमन्त्री तहमन हुइलक यी सम्वाद आघ नै नेपालके मलेसिया संघके कूटनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा निरन्तर सम्वाद आघ बढ़ागिल रह। मलेसिया नेपाली श्रमिक भर्नाके लागि शुरूमन 25 म्यान पावर कम्पनी कलक रजिस्ट्रार रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी के रूपमा विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली FWCMCS CMS मन स्वीकृत करल पाछ नेपाल उही प्रति औपचारिक असहमति जनाइटियल रह। टीकापुरमा हुक्का खाई बैठक घोड़ाघोड़ी नगरपालिका नौ फारम के 18 वर्षीय विमल साउटके ऊपर खुड़ा प्रहार हुईलबा। सोमवार संध्या का करीब 6 बजे टीकापुर नगरपालिका सात बेलुआ स्थित त्री हाउस होटल मना हुक्का खाई बैठक साउटके ऊपर तीन ठो मोटरसाइकिल महिलक 8-9 जना के समूह एकचोट खुड़ा प्रहार कलक प्रहरी से जना गिलबा। खुड़ा प्रहार से साउटके दाइने हाट ओ ग्वारा मन चोट लागल बा। घाइते साउटके टीकापुर अस्पताल में उपचार पाछ गैल रातका नै थप उपचारके लागि नेपालगंज रिफर करगिलक प्रहरी से जनागिल बा। प्रहरीकै अनुसार घाइते साउदकै अवस्था मध्यम रहल बा। आक्रमण पाछा संलग्न समूह फरहार हुइला को हुकनके खोजी कार्य जारी रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरके प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डांगी जानकारी देलबाट। प्रतिनिधि सभाकै आजकै बैठकमा संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानून सम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गतकै राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार सेफे बाहिरके क्षेत्रके सामुद्रिक जैविक विविधताकै संरक्षण ओ दिगो प्रयोग सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन हुइलबा। सम्झौता उपरकै छलफलमा उठलक प्रश्नकै जवाब देती कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम सामुद्रिक सम्पदा से नेपाल हन फाइदा हुइनाकै सम्झौता कार्यान्वयनकै लागि आवश्यक कानून निर्माण हन सरकार उच्च प्राथमिकताकै संग ढरलक बटुलाबाट। छलफलमा सांसद ठुक्र सामुद्रिक सम्पदा हन देशकै समृद्धि व दिगो विकासकै लक्ष्य से द्वारापना बटुलाबाट। विगतमा समेत नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता हुकनके पक्षरास्त हुइलसे फे वाकर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हिबेर लाभ लिहनी शेकलक बटुटी सांसद हुक्र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनकै लागि आवश्यक कानून हली निर्माणकै कार्यान्वयनमा जोड़ देहपना बटुइलबाट आजकै बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति हुइलक संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक 2083 के सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभासे प्राप्त सन्देश टेबुल हुइलबा यी स्याग बैठकके शुरूमा सांसद हुक्र काठमाडौँकै त्रिपुरेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीसँगकै विवाद बस चालक अर्जुन डांगी आत्महत्या कलक विषयमा छानबिन समिति गठन गर सरकारसे माग गर्लरह सांसद थुक्र बसमा हुइलक आगजानीके विषयमा सत्य तथ्य जानकारी बाहिर लान अविलम्ब न्यायिक छानबिन समिति गठन गर माग गर्लरह सांसद थुक्र यात्रु चालकके सुरक्षाकै लागि प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन सुरक्षित ओ व्यवस्थित सड़क पूर्वाधार निर्माण ओ राज्यके नियमनकारी निकाय मर्यादित बनपर्नामा जोड़ देलबाट असिन घटनासे राज्यप्रति नागरिकके निराशा लाखौं बेरोजगार युवाहकनके पीड़ा व्यक्त करलक बटुइटी सांसद थुक्र नागरिकके संवेदना ओ गुनासाप्रति सरकार गम्भीर बनपर्ना बटुइलबाट बैठकमा सांसद थुक्र बढ़दो सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण सार्वजनिक सवारी चालकके मनोसामाजिक अवस्थाके अध्ययन कैख आवश्यक अनुसार के आवश्यकता अनुसार के तालिम ओ परामर्श के व्यवस्था गर माग गर्लबाट वस्तक सांसद थुक्र बजारमा बढ़दो महंगी ओ कालो बजारी नियन्त्रण गर विभिन्न जिल्लामा फैलागिलक स्क्रब टाइफस डेंगी लगायत के संक्रामक रोग नियन्त्रणकै लागि पहल गर राष्ट्रिय निकुञ्ज आन्जर पाँजर के क्षेत्रमा मानव वन्य जन्तु द्वन्द नियन्त्रणके पहल गर सरकारके ध्यान आकर्षण गरैलबाट खोज खबरमा फेरफेर विश्राम विश्राम पा छैन नि बाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
3: आइ हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछसे शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल
4: अरे का करूरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का
3: मिस्तरान बर्जनाउकन घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट अल्युमिनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढो हो ना कबू कहूँ घुम जाए तो था पाए
5: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541326
7: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरोसाइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
8: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबारका दिन
9: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
7: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन लगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागु पदार्थ सेवन गर्ने
9: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला
8: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार
10: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजे बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772
2: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा सरकार भोटे कोशी लड्यामा ऐलक बाढ़ीकै कारण पुग्लक क्षतिकै आकलन कैक विपद पाछकै आवश्यकता मूल्याङ्कन डीपीडीएनए प्रतिवेदन तयारीकै लागि अध्ययन आग बढ़ैलबा। मन्त्री परिषद के भदौ 12 गते के बैठक से अध्ययन करना निर्णय करती योजना राष्ट्रीय आयोग न जिम्मेवारी देगिल रह जिम्मेवारी पाइलसँग राष्ट्रीय योजना आयोग आवश्यक कार्यविधि तैयार पार्क सर्वेक्षण के लागि 5 जिल्ला मन कर्मचारी परिचालन करलबा। आयोग 5 जिल्ला के 15 ठो पालिका में प्राविधिक सहित के कर्मचारी हुकन के 83 टोली परिचालन करना निर्णय करल अनुसार सोमवार सम्म 54 ठो सर्वेक्षण टोली मन 162 कर्मचारी परिचालन होक सर्वेक्षण के काम आग बढ़ना जनागिलबा। आयोग स्थानीय पालिका हुकन के सहयोग मन परिचालन हुना सर्वेक्षण टोली से तथ्यांक आपन डिभाइस मन प्रविष्ट करना के संग योजना आयोग के सिंहदरबार स्थित कार्यालय में प्रत्यक्ष देखजिना व्यवस्था करगिलबा। ऊ तथ्यांक दैनिक रूप में अत्यावधिक व्यवस्था समेत मिलागिलबा। स्थलगत सर्वेक्षण के लागि होटल उद्योग वाणिज्य क्षेत्र के क्षति के स्थलगत तथ्यांक संकलन करनाकै प्रश्नावली तैयार पार्क पठागिरक राष्ट्रीय योजना आयोग के सचिव रविलाल पन्थ जानकारी देलाबाट। पीडीएनए सर्वेक्षण कार्यकै लागि योजना आयोग राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डाक्टर गुणकर भट्ट के संयोजक तोमन निर्देशक समिति सहित 3 ठो समिति गठन कै संयोजन के काम करती रहलबा। आयोग सर्वेक्षण कार्य आग बढ़ाई विभिन्न 7 ठो कार्यदल समेत बनैलबा। ज्याकर संयोजन आयोग के सहसचिव फुक्रकना व्यवस्था मिलागिलबा। आयोग असोज के 15 गते भीतर मन तथ्यांक विवरण संकलन कै असोज के 24 गते सम्म प्रारंभिक मस्यौदा तैयार पर्ना ओ असोज के मसान्त सम्म मन मूल प्रतिवेदन तैयार पर्ना कै काम आग बढ़ागिलक आयोग के सचिव पन्थ बटुइलबाट। यी सर्वेक्षण से घर परिवार उद्योग कर्पोरेट क्षेत्र के तथ्यांक संकलन करविया बाकल से बैंक वित्तीय संस्था तथा सरकारी क्षेत्र के क्षति के विवरण संबंधी जिम्मेवारी निकाय हुक्र नेपाल राष्ट्र बैंक तथा मंत्रालय से उपलब्ध कराजिनाबा। सरकार योजना आयोग न 6 हप्ता भीतर मन पीडीएनए प्रतिवेदन तैयार पारकलबा। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पार्क भूटान के राष्ट्रीय क्रिकेट टोली पोखरा रंगशाला स्थित क्रिकेट मैदान में 4 ठो मैत्रीपूर्ण अभ्यास खेल खेलना हुईलबा। आईना आईसीसी मेन्स T20 विश्वकप एशिया सब रिजनल क्वालिफायर ए के तैयारी के लागि भूटान के राष्ट्रीय पुरूष क्रिकेट टोली पोखरा आई लगलग हो। नेपाल क्रिकेट संघ के सहयोग तथा गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक संघ के आयोजना में भूटानी टोली पोखरा में 4 ठो अभ्यास खेल खेलना गण्डकी के प्रादेशिक क्रिकेट संघ के अध्यक्ष संजय कांत सिगदेल बटुलेबाट। वहां के अनुसार ऐना अक्टूबर 3 थे से मलेशिया में शुरू हुना प्रतियोगिता के तैयारी स्वरूप भूटान पोखरा आना अभ्यास गंतव्य के रूप में छनौट कर लख पोखरा में हुना अभ्यास खेल से यहां के क्रिकेट विकास के संघ खेल पर्यटन प्रबंधन तथा पोखरा अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद गंतव्य के रूप में स्थापित कर सहयोग पुग्न अपेक्षा करगिलबा। तालिका अनुसार भूटान असोज 11-12 गते गण्डकी प्रदेश क्रिकेट टोली से तथा असोज 14-15 गते क्यान 11 से अभ्यास खेल खेलियाबा। आप सबको खेल पोखरा क्रिकेट मैदान में आयोजना हुईटीबा। सेप्टेम्बर 27 अर्थात विश्व पर्यटन दिवस के दिन पोखरा क्रिकेट मैदान में भूटान व गण्डकी प्रदेश बीच हुईना पहल अभ्यास खेल हन क्रिकेट व पर्यटन हन जोड़ना महत्वपूर्ण अवसर के रूप में हेरगिलबा। यह समाचार के संग खोज खबर और आयल अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से ऐना शुक्रवार थे से सोमवार सम्म नेपाल मन भारी थे से अति भारी वर्षा के संभावना स्थानीय तह पूर्व सूचना में जोर देकर सतर्कता अपनैती। मुक्त कमैया की समस्या समाधान कर बजेट मन आवश्यक व्यवस्था करना सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री खगराज भट्ट के कहाई। ओ सुदूर पश्चिम मन सहज नहीं हो मृगौला रोगी नहन डायलिसिस सेवा लिहे। लीता आवकला थारू भाषा खोज खबर अतरह 6 बजे नेपाली भाषा में खोज खबर सुन सकबी। आवक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती। मई गीता फी बिदाई टू सामुदायिक रेडियो टीका पर एफएम सुनती रवि राम राम।
11: लक्की ट्रेडर्स टीकापुरमा एनटीसी र एनसीएल को सिम कार्ड ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी लिमिनेसन प्रिन्ट ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
12: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणाली धारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पुर्दा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
11: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा संचालक खगेन्द्र चौधरी सम्पर्क नम्बर 9868551000
13: घर त जेन्तेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
3: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
13: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
3: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
13: अब त म ढुक्क
14: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरा पारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनराज भाट
3: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरा पारी टिकापुर कैलाली
15: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको धारजरानका लागि आवेदन दिने बारेको सूचना। टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था र टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित रामपुर खानेपानी एक आपसमा मर्ज भई खानेपानी सेवा विस्तारका लागि सम्झौता भइसकेको हुँदा वार्ड नम्बर 3 का उपभोक्ता ज्यूहरूलाई विशेष सहुलियतमा धाराजरान गर्ने योजना रहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। उक्त सहुलियत कार्यक्रममा सहभागी हुन यही मिति 2083 असोज 1 गतेदेखि पुस 1 गतेसम्म संस्थाको कार्यालयमा धाराजरानका लागि आवेदन दिन हुन अनुरोध छ। याद राख्नुहोला, पुस 1 गतेपछि सहुलियत कार्यक्रम लागू हुने छैन। थप जानकारीका लागि संस्थाको कार्यालयको सम्पर्क नम्बर 091-561-449 सम्पर्क गर्नुहोला। टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था।
1: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्दी भोज आगी लिन अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
2: अजि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आतु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ।
1: तुहार बाट अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुगर बना कन ल बाटी
2: ए ले ले ठिके बा चल हाली भात वट खाइ औ जाइ कहु सामुएल ज्वेलर्स न घर गहना बनाइ।
3: सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए। मोबाइल नंबर 98684-41-208 98486-39-261।

0: के तपाईलाई थाहा छ, असोज कार्तिक र मंगसिर महिनामा तपाईहरूले लगाउनु भएको धान काट्ने बेला या काटिसकेपछि खेतमै भएको बेला अत्यधिक वर्षाको कारण धानमा क्षति हुने उच्च जोखिम हुन्छ। पोहोर साल जस्तै धान काट्ने बेलामा अत्यधिक वर्षाका कारण धान भिजेर टुसा पलाएर कम आमदानी हुन सक्छ। त्यसैले तपाईँको यही जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै प्लान चतको सहकार्यमा सालीको इन्सुरेन्समा आधुनिक प्रविधि सूचकाङ्कमा आधारित भई बिना कुनै झन्झट बीमा गर्न र बिना कुनै कागजात जुटाई दावी प्रदान गर्ने व्यवस्था ल्याएका छौं। दाङ, कपिलवस्तु, कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया र बाँके जिल्लाको धान किसान हुनुहुन्छ र यदि यो बीमा गर्न चाहनुहुन्छ भने रु 113 प्रति कट्ठामा अधिकतम रु 1595 सम्मको बीमा खरिद गरी ढुक्क रहनुहोस्। थप जानकारीका लागि 01-59-71-586 सम्पर्क गर्नुहोस्।
1: एल्विस एल्विरा टेरसमा डिजाइन डिजाइनका साडी, सुट, कुर्ती, पलाजा तथा थानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
2: एल्विस एल्विरा टेरस, सिद्धार्थ चोक गालप सुपर मार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली, संचालक सुजिता श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9811-6738-87।
3: घर कहिया सिर्जैबो? पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
4: अरे का करूरी बुढ़िया, कथुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
3: मिस्तरान वर्जन का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो होना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
5: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848-51-43-26।

0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिलेर इठ कबु झलै फटाका आज इठ का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जलम भर भर भर आई राहत
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गया झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी हरी थी ना कबू पेंसिल हेरी थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गई संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: टिकापुर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको सम्भावित भारी वर्षा र बाढी सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना आदरणीय नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार आउँदो असोज 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत यस क्षेत्रमा बढी अथवा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ टिकापुर नगरपालिका कर्णाली नदी र स्थानीय नदी कुलाहरूको तटीय क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले अत्यधिक वर्षाका कारण आकस्मिक बाढी डुबान र कटानको उच्च जोखिम देखिएको छ तसर्थ धनजनको क्षति हुन नदिन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा विपद व्यवस्थापन समिति हार्दिक अपील गर्दै निम्न बमोजिम सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्दछौ मुख्य सावधानी तथा पूर्व तयारीका उपायहरू नदी किनारमा नजाऊ बाढीको समयमा माछा मार्न काट दाउरा संकलन गर्न वा पौडी खेल्न कर्णाली नदी र स्थानीय खोला खहरेहरूमा नजाऊ महत्वपूर्ण कागजात तथा सामान सुरक्षित राखौं आफ्नो नागरिकता जग्गाधनी पूर्जा शैक्षिक प्रमाण पत्र औषधि र नगद गहना जस्ता बहुमूल्य सामानहरू वाटर प्रुफ झोलामा राखेर घरको सुरक्षित वा अग्लो स्थानमा राखौ बाली नाली भित्राउन हतार नगरौं धान भित्राउने मौसम भए तापनि मौसमको यकिन नगरी कृषि कार्य नगर्नुहोला काटेको धान भए तत्काल सुरक्षित ठाउँमा सारौं होचो स्थानमा व्यवसाय भएका व्यवसायीले सुरक्षित स्थानमा सामानको व्यवस्थापन गरौं विशेष वर्गको ख्याल राखौं बाढी वा डुबानको जोखिम बढेमा घरका वृद्ध वृद्धा बालबालिका गर्भवती महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थान वा सामुदायिक आश्रय स्थलमा लैजाने तयारी गरौं आवश्यक जानकारी तथा सहयोगका लागि वडा अध्यक्ष नगर प्रहरी विपद सम्पर्क व्यक्ति तथा सुरक्षा निकाय र सरकारवालासँग समन्वय गरौं टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली

0: दाई बेड भूख लगता खाजा बाकी नहीं। ए काकी फे आयल बाटी राम राम काकी।
1: राम राम हो नानी मजा बाटो ऐसन ले छाइट भारी हो स्याकल बाजे आप हली भुआस कर दिए पड़ल है समय में भुआस कर दिल से आपन जिम्मेवारी फे वरी ना और जनक बात फिर सुननी पड़ना।
2: आ दीदी फे वो बेला आपन कटरा पहना इच्छा रह छुट्टी में भुआस कर देखा मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता फिर डोरिया नी चाहू दीदी मई चाहे ये बाल विवाह करनी चाहू ये बाल विवाह नी करन दीदी।
3: शारीरिक को मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कई देना से दाई वो बच्चा दोनों के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकर उ हिंसा के शिकार बन सकर उही है विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई सकती उ रोजगार फिर नहीं पाए वो गरीबी में बांच बाध्य हुई पड़थिन। नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई असिन कराई से 3 वर्ष सम कैद वो 30,000 रूपया सम जरिमाना हुई सकर वो असिन भुआस कानूनी मान्यता
1: टीकापुर नगर पालिका ओडा नंबर 3 से देगिलक जनहित में जारी संदेश।
4: के तपाईलाई थाहा छ असोज कार्तिक र मंगसिर महिनामा तपाईहरूले लगाउनु भएको धान काट्ने बेला या काटिसकेपछि खेतमै भएको बेला अत्यधिक वर्षाको कारण धानमा क्षति हुने उच्च जोखिम हुन्छ। पोहोर साल जस्तै धान काट्ने बेलामा अत्यधिक वर्षाका कारण धान भिजेर टुसा पलाएर कम आमदानी हुन सक्छ। त्यसैले तपाईको यही जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै प्लान चतको सहकार्यमा सालीको इन्सुरेन्समा आधुनिक प्रविधि सूचकाङ्कमा आधारित भई बिना कुनै झन्झट बीमा गर्न र बिना कुनै कागजात जुटाई दावी प्रदान गर्ने व्यवस्था ल्याएका छौं। दाङ कपिलवस्तु कैलाली कञ्चनपुर बर्दिया र बाँके जिल्लाको धान किसान हुनुहुन्छ र यदि यो बीमा गर्न चाहनुहुन्छ भने ₹113 प्रति कट्ठामा अधिकतम ₹1595 सम्मको बीमा खरिद गरी ढुक्क रहनुहोस्। थप जानकारीका लागि 01 59 71 586 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बाल बालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35-8 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।